सतगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। गुरबाणी की पंक्ति सानू कहती है इसके बारे।

0: जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श।
1: हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा।
0: जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुपे मेल मिला।
1: हर कृपा कर सुन बेनती, हर कृपा कर सुन बेनती, हम पापी किरम।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो कर जाना, एक रूप किन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मूं करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीप किते दीप जगायो, जग वरदान समा बहु आवा, रामदास तम गुरु विजय पूर्व देवड़ा, इसकी मस्त किसे घर आवे, बैठा स्वर्गी पातशाह, रामदास सतगुरु। जग तो मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग, कबहू को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहित ब्रंच जस गावे जग को, शिव मन कहे ना तजात कविलास को, जांको जोगी जती सिद्ध साधक अनेक तप, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए।

पूरे शब्द को जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंद्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाव है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इसनु असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इसनु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

0: अमृतसर सतगुर सत मस्ती जितनाते कौवा हंस होए
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर न बढ़ाया सब लाथे केल वेख पंग
1: सतगुर

सरवण करो। भाई बलबीर सिंह जी ने रागी जते पासू शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

सब मेरा रया प्रभ एक है, सब मेरा रया प्रभ एक है, सब मेरा रब रया रया रया रब एक है, सब मेरा रया।

रव रया अम के सब में रव रया बस गई सब दंत बनाई जब दे साल संग माई ना को मेरी नहीं दिखाना संग संग हम गो बने आई जो गाऊंगी न जो वरमान हो मस मस साधु दे भाई सब में रव रया रव रया रव रया हाँ प्रभु एक है सब में रव रया

चार पांव और श्रवण करो। पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है। ताल

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा वरे आ

0: एक ताल दो ताल तीन ताल चार ताल और चार ही राग माल कौस चंद्र कौस सूर्य कौस जोग कौस चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई जब ते सात संग तुम पाई ना को बैरी ना ही बिगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभ की नो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रहे प्रभ लिखते देख देख नानक दिखसाई आप जी ने श्रवण किया है तराना साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने यह तराना जेड़ा है यह अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा ऐसा साडे सामने ना कहा कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ यह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी इह सानूं लिखा दिओ तराना असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को श्रवण करो उन्होंने को दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की इतने दुर्गाना मंदिर की बात है सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब तो तराना श्रवण करना साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ में विद्यमान ने कभी आप दर्शन करना तो
1: तद्र दानी दानी दोमानी तल तोम चिरना तद्र दानी दानी दोमानी तल तोम चिरना तल तोम चिरना तल तोम चिरना
0: जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज नु मत्था टेकना जे तुम दानी हम भिखारी हैं और तुम दानी है
1: तल तोम चिरना।

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करियो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हरिमंदर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नामदेव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरिमंदर उदों भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परां हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शिया गुरु अर्जन साहब ने ते गुरु का दिता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बोवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह दी खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

गल राम दे नां दी है पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहे। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

प्रभु परमेश्वर दा नाम जपया करो, हर वेले नाम ही सिमरिया करो और परमात्मा दा नाम अमृत पींदे रहा करो। साई फरमाउंदे हन कि इस नाम दी किस नू प्राप्ति हुंदी है,

प्रेमी बड़ा दुखी होया, कहन लगा मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रशादा नहीं छकिया, कहंदे ने तेरा घर सोतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसे ने कहा दुखी ना हो, इत्थे धन गुरु नानक साहब आए ने, ओ सोतक पातक नहीं मनदे। इत्थे एक गल याद रखना, जिथे कोई जन्म लवे उथे कहा जांदा है सूतक, जिथे कोई मरे उथे कहा जांदा है पातक। इस प्रेमी ने कहा तू दुखी ना हो, गुरु नानक साहब दे कोल जा, ओ सूतक पातक नहीं मनदे, इन्हां परमा वहमां विच नहीं पैंदे। ए प्रेमी धन गुरु नानक साहब दे कोल आया ते बेनती की, महाराज मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया पर ब्राह्मणा ने भोजन नहीं छकिया, कहंदे ने तेरा घर झूठा सूतक आला। धन गुरु नानक साहब ने अपने सिखा नूं प्यारिया नूं भेजिया, जाओ तुसी प्रशादा छक के आओ। सिखा ने प्रशादा छकिया, उन्हां ब्राह्मणा नूं पता लगा ता उन्हां नूं इस गल दा मन विच बड़ा रोस जा गया। ए सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके धन गुरु नानक साहब दे कोल आए और गुस्से नाल कहन लगे, महाराज तुसी धर्म ते नहीं चलदे, तुसां धर्म दे उल्ट काम कीता। धन गुरु नानक साहब जिन्हां दे चेहरे ते कदी गुस्सा नहीं आया, चेहरे तों नूर टपकदा है।

आओ पंडितों, आओ ब्राह्मणों, बैठो। जेड़ी विचार करनी है बैठ के करो, क्योंकि विचार बह के होंदी है, शांत मन नाल होंदी है, तलखी नाल नहीं। बैठो, अपनी गल सुनाओ।

से फिटे गुरु बाबे फिट के से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे

हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपह आणिया हर तुम वट अगम अगाह।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कवन गुण कही है जेबा एक तू समर्थ वड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम हम अज्ञान अल्प मत थोरी तू समर्थ वड़ा वड्डी हूं वड्डा।

0: जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो।
1: हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संग तरा।
0: जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला
1: हर कृपा कर।

और यत्न करिए जो गुरु ने शानु पूर्ने पाके दसे हैं कि प्यार कीता है गुरु ने साडे नाल असी भी जतन करिए उनु प्यार करने उच्चारण करो श्री भाई शाह भाई गुरदास जी ने गुरसिख का गुरसिख नाल कितना प्यार होना चाहिए किवें दसिया आख्या सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे एक बड़ा सुंदर सवाल है सिर उच्चा है सब तो नीवे पैर हन भाई साहब कहिंदे ने फिर पैरां वल सिर क्यों जांदे उन्हां कदमां दी की खूबी की है सारिया पैरां ते तां नहीं सिर झुक जांदा उच्चारण करो श्री सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे मूह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे ये सारे चिन्ह उपर हन मूह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे हजूर कहिंदे ने सब चिन्ह छड पूजियन कदमां दी पूजा क्यों होंदी है वो कौन कर्म कमांदे वो कदम केड़ा कर्म करते हैं जिन्हां कदमां ते बदो बदी सिर झुक जांदा है उच्चारण करो श्री ता अगलियां टुकां विच भाई साहब जवाब दे रहे हैं आप कहिंदे ने भाई वो कदम तां तनता दे योग हैं गुर सरणी साध संगति नेत चल चल जाते गुरु के सिख दे कदम सत संगत वाले जान चंगे रहते अमृत वेले उठ के गुरु का सिख इशनान करदा है ते फिर मुख तो जप रहा है श्री किधर चले हो जी मैं गुरुद्वारे चले किदी सोहनी सुगंधी है कितनी सोहनी शोभ है क्योंकि पहली पौड़ी ही गुरसिखी दी अमृत वेले जागना है धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आकीदी पौजल बनी हुई सी दस लख दा फेरा सी इतिहास विच पढ़ो जदों आनंदपुर साहब दा किला छड्या ते एडे वड्डे पौजल विच भी उन्होंने अमृत वेला बिना कीर्तन दे नहीं बिताया जदों अमृत वेले दा समा होया भाई दया सिंह साडा अमल टुट गया गरीब नवाज समझ नहीं आई आख्या आशा दी वार दे कीर्तन दा समा जा रहा है ते उत्थे भी बह के आशा दी वार दा कीर्तन होया हुण असी अपने अंदर छाती पाईए कोई केड़ा सुख है जो वाहिगुरु ने सानू नहीं दिता ते फिर इन्हें सुख प्राप्त करके भी असी उहदा शुकराना नहीं करते उन्होंने तो सानू पूरने पाके दसे हन कि इतने पौजल विच भी गुरु के सिख ने अपना नितनेम त्यागना नहीं ते असी एडियां सुखां विच रह के भी जे उहदा शुकराना नहीं करदे तां फिर सिख कदे होए उच्चारण करो श्री वाहिगुरु इस लई आओ भाई भाई साहब गुरदास जी पूरने पा रहे हन कि अमृत वेले उठ के इशनान करके जो गुरु के दरबार जांदे हन भाई गुरदास जी कहिंदे हन उन्हां नूं कह दिओ जिहड़े जोड़े उन्हां पहने हन उह उतार देण पता नहीं किस चमड़े दे हन आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बनवा के उन्हां नूं पहना दिओ उच्चारण करो श्री भाई गुर शरणी साध संगति नित चल चल जांदे वतन पर पुकार नूं कर पार वसांदे मेरी खलों मौजरे गुरसिख हांडा तो भाई इतनी निमरता गुरु घर विच है परस पर आपस विच प्यार करिए जदों भी मिलिए फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का हजूर का वचन है जेड़ा पहला फतेह बुलावेगा मेरा मुख उस वल होवेगा उच्चारण करो श्री भाई होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो निवलाए हर नामे की होवो जोरी गुरमुख बैठो सफा विषय आज जुड़े बैठे हो हजूर कह रहे हैं सही सुंदर सोने साध संगत जो बहने गुरु नूं कोई सुंदर लगते हैं चंगे लगते हैं जो सत संगत विच बह के जपदे हैं श्री वाह तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्यवाद है सरबत संगतां का सरदार साहब
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

0: केन्द्रहन में परम गति पाले ही सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भगत रविदास जी दस दहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिए नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं
1: संत जना के संग मिल बारे
0: कमले इधर उधर ना फिर

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संग है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्हां ने ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, जिन्हां ने पक्के होए आत्मक जीवन दे विच प्रपक साधुआं दे नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ऐ जिहड़े कच्चे हन इन्हां ने ते इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे। साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड्डा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

first insight, first awareness which came to me, O AC, मैले कपड़े कहां लौट हो. पहली अवेयरनेस ए आई कि मैनू अपने अंदर मैल नजर आई कि मेरा दिल मेरा अंदर मैला है. ते इस दे विचों ए होश आई ए जाग आई कि जद मैं खुद ही अपनी मैल देख ली है कि मेरे अपने अंदर मैल है और जितनी देर तक वो तुहाडे सामने कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा अपनी मैल नहीं दिसेगी. क्योंकि पवित्रता ही साढ़े सामने आवे तो सानू अपनी मैल दिसेगी. तो महापुरुषों की पवित्रता ही सामने जो मैनू अपनी मैल दिसी तो मेरे अंदर फौरन यह सवाल पैदा होया कि मैं दूसरों के मैले कपड़े कदों तक धोंदा रहांगा जबकि अज मैनू अपने अंदर भी मैल नजर आ गई. यह आख रहे हैं.

बहुत प्यारे वचन है ना, ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसे ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसे वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हां, उस रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं। मेरे नाल किसे ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हों, उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हां, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो, जेड़े गलत सुभा पक चुके सन। आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे द सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहते मैं ये सारे द सारे फौरन पाड़ सकते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वो कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनों सुनो फिर उसका असं अर्थ करांगे।